रेडियो एक सौ समय को हज का साथ ही इंटरनेट अनलाइन को www.radiodharan.org मार्फत संसार भर के साथ प्रसारण भइदिएको बिहान 7:45 बजे को खबर में म ब्रेक को नमस्कार। खबर को शुरू में मुख्य खबर।

0: रिलायंस फाइनेंस लिमिटेड वित्तीय सेवा को अर्को परिभाषा
1: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ज।

0: स्ट्रिंग इमेजिंग टाइम टेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: रेडियो धारी समय संकेत
3: अहिले बिहानको 8 बज्यो

0: शिक्षा प्राप्त गर्क को वित्तीय संस्था
1: रिलायंस फाइनेंस लिमिटेड वित्तीय सेवा को अर्को परिभाषा
2: समुदाय का लागि समुदाय को आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: रेडियो धादिङ समय संकेत
3: अहिले साँझको 7 बज्यो
4: शिवम सिमेन्ट क्वालिटी को मामला में नो कम्प्रोमाइज भन्दै शिर ठाडो पारिरहेका छौं सदा सर्वदा

रेडियोधारी 100.1 मेगाहर्ज का साथ ही इंटरनेट अनलाइन को www.radiodharing.org मार्फत संसार भरकै साथ प्रसारण भइरहेको बेलुकी 38 बजेको खबरमा म रेकको नमस्कार। खबरको सुरुमा मुख्य खबर। बूढ़ी गंडकी र नेत्रावती नदी को संगम स्थल में निर्सिंह धाम पुरुषोत्तम महामहोत्सव शुरू। महोत्सव को बागमती प्रदेश का मुख्यमंत्री बानिया द्वारा उद्घाटन। धादिंग में 51 किलो अफीम सहित एकजना पकड़ाऊ। भरुआ बंदूक साथ में राखने र कर्तव्य जान मुद्दा का फरार प्रतिवादी पकड़ाऊ पड़े। बेलजू 7 खर्ब 55 अर्ब पुग्यो। एक वर्ष में 88 अर्ब थपियो। ट्रम्प को चीन भ्रमण संपन्न। कुनै ठूलो व्यापार समझौता को घोषणा भएन। अब पूरा खबर। धादिंग को त्रिपुरा सुन्दरी गांवपालिका वडा नंबर 1 स्थित बूढ़ी गंडकी र नेत्रावती नदी को संगम स्थल में नृसिंह धाम पुरूषोत्तम महामहोत्सव शुरू भएको छ। वैदिक सनातन परंपरा अनुसार भगवान नृसिंह देव का 12 प्रमुख पीठ मध्य नेपालमा रहेको एकमात्र पीठ का रूप में परिचित नृसिंह धाम में पुरूषोत्तम महीना को अवसर पारे एक महीने महोत्सव शुक्रवार देखि शुरू गरिएको हो। स्कंद और बराहा पुराण में समेत उल्लेखित नृसिंह धाम भगवान नृसिंह देव प्रकट भई दिव्य लीला गरेको पवित्र भूमि का रूप में परिचित छ। परापूर्व काल देखि नृसिंह धाम क्षेत्र में विशेष धार्मिक महोत्सव गरिदै आएको पीठाधीश डाक्टर श्रीवास कृष्णदास ब्रह्मचारी ले बताउनुभयो।